कीर्तन जप निरता के पारावार आप कराए सख्त विराप कराए मार एक नागरी जी जी रे कुंतर पिसियार आप कराए करे।

सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

विद्या की विचार हो कि अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो जोबन के जाल हो के काल हूं के काल हो

दस्तु हि ब्रजस्तु हि पतस्तु हि चितस्तु हि ऊर्ध्वस्तु हि भजस्तु अंग भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग दिमीतु हि जमातु हि मकीतु हि मकातु हि अभूतु हि अभतु हि अछूतु हि अछतु।

त्वा प्रसाद कबित हुक मल हरि गज गद हा विभूत दारि गिद्वा मसान बास करे हुई करत है हुक बट मासी लगे डोलत उदा सिमरिक तरवर सदीव मोन साधई मरत है बिंद के सथैया ताहीज की बनैया देत बंदर सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कह तरत है भूत बन चारि छिद छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के बछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौवन के जैया प्रिक भैया मानियत है नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बटैया देत बगुला बिडाल प्रिक ध्यान ठानियत है जिते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पखानी नाहे असना प्रपंच मन भूला नियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया के बखानी है फल के भजैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया तत भूत के पछानी है जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के बछैया सो जगोर सम मानिए सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिए नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारि ऋखि के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटेरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूढ़ रूढ़ पीटत न गूढ़ता को भेद भावे पूजत न ताहि जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है जो कि जटाधारी सती साजे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह

बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में बिरत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट, फेस बोस दी अनेक दानी वावत है। शीस को कहा भयो मल्ल जप काढ़त अनेक दंड, सोतना दंडौत अस टांग अथ तीस को कहा भयो। रुकि जो पे डारे रहे उर्द मुख मन, तेना मुंडने हो रायो आद ईस को। कामना अधीन सदा दामना प्रवीन, एक भावना बीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पटकत जाके कान में खजूर, से मुंड झटकत मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ। आंख को जरैया फल फूल को भचैया, सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ। कहा भयो भीड़ जो घसत शीस वृक्षन, सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोक सौ। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीन, एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत, शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक बाय ठंड सदा मन में रहत, वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे, काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन, भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जोगी या बैरागी बन, कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौनहारी कहूँ बैठे लाए दारी, कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी, कहूँ दंडधारी होय के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन, सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार गीदर पुकारे पर शीतकाल, कुंचर ओ गदहा अनेक ता पुकार ही। कहा भयो जो पकल वत्र लियो, कांसि बीच चीर चीर चोर टाक उठार अंसो मार ही। कहा भयो फांसी डार बूढ़ जड़ गंग धार, डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार, भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ, तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पे पायत अजाप, देव पूतना सदीव तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत, अनल आकाश पंछी डोल भो करत है। आग में जरत गतराण की परत कर, पताल के बस के भुजंग न तरत है। को भयो मुंडिया सन्यासी, को जोगी भयो को ब्रह्मचारी, को जति अनुमान वो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान वो। करता करीम सुई रास करहीम, ओई दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो। एक ही की सेव सब ही को गुर देव, एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो। देहु राम सीत सुई पूजाओ निवाज, उई मान सब एक पै अनेक को भ्रमाव है। देवता देव जच गंधर्व तुरक, हिंदू न्यारे न्यारे देसर के भेष को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह, एक बान खाक बाद आतस ओ आप को रलाव है। अल्लाह अफेक सुई पुरान ओ कुरान, उई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है। जैसे एक आग ते कनु का कोट, आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत भच, केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे भच, केतक प्रतच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज, जैसे तेज रीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत, कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंगवासी कित मदीना मक्का निवासी, कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त, कित सुअ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत, कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानो बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी गस हारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार पूज हारे, पाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे।

परे अंपरा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो वाद भंगे नमो वाद भंगे। कित कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाध अभयाद अद्वय अविनाशी परे अंपरा।

अभिखंग न सतरंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजो नियच्छयाद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सोगं वैनिर्विखादं अछेदं भेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं पालं न दातं न मातं न जातं न गायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्धबिरधं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभा

सोकं न साकं परे अंग पवित्रंग पुनीतंग गतांग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे। कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के भेष के धर्म धामे कहूं राज के साज के

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ।

जेहे त्रास वास नहीं देह नास जेहे आद अंत नहीं रूप रास जेहे रोग शोक नहीं जोग जुगत जेहे त्रास आस नहीं भूम भुगत जेह काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जेह नेत नेत उचरंत वेद जेह अलख रूप कथत कतेव जेह अलख रूप आसन अडोल जेह अमित तेज अक्षय अतोल जेह ध्यान काज मुंजन अनंत कई गलप जोग साधत दुरंत तन सीत घाम बरखा सहंत कई गलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावतन पार कई उर्ध बाह देसन ब्रह्मंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोग काव कथत कतेव कई अगन होत्र कई पौन हार कई गर्त कोड मृत को आहार कई गर्त साक पै पत्र भच नई तदव देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अगन होत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखार टंत कई देश देश विद्या बढ़ंत कई गर्त भांत भांतन विचार नहीं नैक तास पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरमत सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूँ राज रीत कहूँ जोग धर्म कई सिमृत शास्त्रत उचरत सो करम न्यौली याद करम कहूँ हस्त दान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घ दान कहूँ वितर करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास गई ब्रह्मत देश देशन उदास गई जल निवास गई अगन ताप गई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदब दास पायत न अंत कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदब दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग

जय जम्पह जुगण जूह जुअंग भय कंपह मेर पयाल भुवंग तप तापस सर्व जलेर धलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग।

रेख रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितं जय रचयं क्षत्रि छत्रछितं जय राग न रेघ न रोग भणं जय द्वैघ न दाघ न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो जस चार करे नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधुरो बिंद न गिंद नगं श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नर पान रिपाल कराल त्रिगं कई कीट पतंग भुजंग नरंग रजांड सेत जूत भुजंग किए देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत चुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न सोग न भोग भुवंग जय जंप है किन्नर जच जुवंग नर नारण पुंसक जाहे किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज बाज रथाधिक पांद गणंग भवभूत भविख भवान तुवंग जय अंडज सेतर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली मन जास कियो फल फूल कली भुव मेरा आकाश निवासितंग रज रोज एकादश चंद्र।

भूत छूत पतंगन गाद ब्यादा नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जे राग न रंग न रेख रुगंग जे सोग न भोग न जोग जुगंग वो भंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंगर चे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर्ण मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद गतेव अनंत कहे जय भूत भूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा निध पान पर जय फोकट धरम सभय तज है एक चित्त कृपा निध को जप है तेउ या भव सागर कोतर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोड प्रति एम बे

नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दा सदीव सर्व सात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानिए। न राग रंग रूप है न रोग राग रेग है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेग है। न तात मात जात है न पाद चयन वर्ण है अदेग से गेग है सदीव विश्व भरण है। विश्वम्बर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है जिमी जमान के बिखे सदीव गरम भरम है। अद्वेग है अभेग है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठोर में।

रंग है न मान है न मौत है न साथ है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साह को कुमार है न नेह है न गेह है न देह को बनाओ है न चल है न छिद्र है न

आओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है, न राग है न रंग है न रूप है न रेख है, न कर्म है न धर्म है, अजन्म है अभेक है, न तात है न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है।

काल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमाद है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न जल है, न छिद्र है, न

पाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत वेग है, बली अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम बेज है, सदा छिज

तथापि करंत सेव है सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्तपी भी सेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिय अगाध आद देव की अनाद बात मानिए न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए सदीव सर्व लोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत भांत सोध है।

जात पातना तात जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखेर रम्यो जे चक्र चिन्ह न चित्र आदि देव उदार मूर्ता गात नात अनंत आदि अंत न जानिए अभिखाद देव दुरंत देव भेव न जान ही जे मरम वेद कतेब सनक औसन केस नंदन पाव ही न सेव जच किन्नर मछ

चक्र चिह्न न बन जाको जात पात न भेख, रूप रेख न रंग जाको राख रूप न रंग, सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग, सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल, दीन बंध दयाल स्वामी याद देवा पाल, दीन बंध प्रवीण श्रीपद सर्व को करतार, बरन चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन कार, जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन, सर्व दाता सर्व

धर्म के अनकर्म जेत कीन तौन पसार, देव देव गंधर्व किन्नर माछ कछ अपार, भूमा का जले धले महिमानिये जह नाम, दुष्ट हरता पुष्ट करता

सत द्वापरत त्यागल जुग चतर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब नहीं पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पार।

अरंक राजा कवन हरक शोक है कवन गुरु की रागी कवन कहो तत् मोहित बंधु होरा कवन सृष्ट को पुष्ट है कहां सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भिष्ट है।

रूड वंगे बबर बंगे भुजा बरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध झमके भूखंड धमके अधसिद झमके फुंक फनंग जय जय उसी मैखा सुर मर्दन रमक बर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन तुजा फरंगण फणी फुंकारण ज्योत जिते सरधार विवरखण दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय होशी मै खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्ता सुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धरम वृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होशी मै खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोघ निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सस प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय होशी मै खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य।

प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय होशी मखासुर मर्दन आद कुमारा गाद वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट बिना

सुन नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुक हरे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन बेसु विदुन संसिष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तर नासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रदर्खण पितल तले अष्टायद बाहन बोल निबाहन संत बनाहन गूढ़ कते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवच्छन सेव करक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदा हे अर्दल गा हे दुख हरे गंजन कुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहीली ज्योत जतीली धुंध मते अष्टायद चमकण शस्त्र झमकण दामिन।

निधान कामल कृपाल दुख दोग हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जह जात पात नहीं भेद भरम, जह रंग रूप नहीं एक

लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रवह है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन देह विरक्त गेह अच्छ है। जान को दे दे अजान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सत सुंदर श्री पदमा पतल है। रोगंते हर सोगंते जल जोगंते बहु भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत खावत तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर पाप सम्भोहन भेटन पावे और की बात कहा कह तो सौ सो पेट ही के बट बीज बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूम आकाश पताल रसादर जच भुजंग सब सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहों को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूमि लगायो वेद कतेव न भेद लख्यो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमा बद सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्पाण सब पचहारे भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे आदा नादा गादव वेगद।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़ैया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया।

पूर्वी न पार पावहि गुला हिमाल देव गौर कर दे जी गुण गाव तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरब आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मरठम गेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दल वाली तेरी आज्ञा में चलत है। रूह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीस ने आवे तिब्बत दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तोहे धायो तिन्हें पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेष कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार

है गो सुख को करण है ग तेज को प्रकाश है पाई है न पार पारावार हूं को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय गावे हा बसी हल विधव पूर बिना पार पावया सत्यानाश है। देवन को देव महादेव हूं के देव है। निरंजन अवेव नाद अद्व अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है। सेवक अधीन है कटैया जम जार के। देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं के जोग है धरैया द्रुम छाल के। कामना के कार है के बुद्धता को हार है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। चीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपाकार कैसी छप कालिंद्री के गोल के। हंस निसी सिहारू महीरा से हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरी गोल्ड चांदनी सी चांदागढ़ गिर त्यारी रही मालती सी फूल के। फटक सी गलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है। हिमा से हिमाल हर हार सी हलाबा ने हंस कैसे हाजीपुर देख मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांद्र गिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहारी के उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी से दुरंगी मकरान के बृदंगी तेरे गीत गाइयत है। भकरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप ओ कमाऊ सर्व ठौर में बिराज जहा।

तारा हर ध्यावो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना।

जिन जग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिन का भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कण को शिव गुण सुख दियो, सतरण को पल मोह पद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जा बुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हों कब हों, तुम मैं मिलत दे धर सब हों। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते

बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आज जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच्छ करो रण घाता जे अस ध्वजताउ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छा छै सकै न कोई एक बार

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अद्वज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांशद फल पावे सोई, दोख नात सह व्यापत

कह चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कह जय भादौ सुधी अष्टमी रवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा

सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छै सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन।

कबीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटों जिस दियां एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजी पंच शब्द तत घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तो दवस कीते काल कंटक मारिया धुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।